0: देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंपती हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has called for WTO compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. The group of 7 G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm elections. Mr. Trump said that European countries had agreed to release large quantities of diesel from their stocks and that the process would begin immediately. The announcement followed an overnight conversation between Trump and French President Emmanuel Macron. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the Global Horticulture Hub will strengthen the horticulture sector and create better opportunities for farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Ms. Sitharaman laid the foundation stone for the Rayalaseema Global Horticulture Hub project and the Indian School of Agriculture at Madanapalle in Annamaya district yesterday. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialties, covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Mr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialities. Union Minister for Port, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has called on the Shipping Corporation of India (SCI) to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark

0: ఉదయతరంగిణి కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 8 గంటలు కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో సమాచార ప్రభాత్, అనంతరం మార్నింగ్ న్యూస్ ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే ముకేష్ కుమార్. भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की. अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला. संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया. कहा, इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे. प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता. और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता. पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से. भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है. अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है. इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं. श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है. एक रिपोर्ट.
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं. जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है. उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया. इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की. आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है. दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया. कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की, प्रगति पर चर्चा की. दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं. कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा. उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा. वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे. यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा. इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा. इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है. अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. अमेरिका में नवंबर

0: नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
5: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित

0: महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूँ में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार तक की इनकम कर ली।
0: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है। हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इम्पोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं। तो MSMEs हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए। आप 2020 में कोविड आया था, तो आप कोविड में किस तरीके से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के, जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कंसंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में, यूपी फॉर एग्जांपल, लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगती हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है, तो ये मेक

0: इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं।
1: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहाँ बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत है। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज, तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहां पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था, आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है, और वो युवा आज जो, जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना, तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप, आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं, और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है, मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी, और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत है, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको, निहारिका, आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी, और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है, और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग, ये चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?

0: जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज़, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज़, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज़ बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमईज का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं, और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम, एक चलिए मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है, बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है, लोग हैं, इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल, एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा,
1: जी
0: बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है,
1: जी
0: वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरफ माइग्रेट ना करना पड़े,
1: जी
0: वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग, सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके ये देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कम्पेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है। तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में।
2: देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम, अगर आप नंबर्स में जाइए, तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको 2 शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात, जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स, केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये

0: इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई के ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें।
1: बिल्कुल
0: तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है, और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखिए ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% में काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि
1: जी
0: जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल। और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के ज़माने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज़ मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है? आज के ज़माने में सेमीकंडक्टर्स इतने ज़्यादा आवश्यक क्यों हैं? और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
2: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है। कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है, तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है,
1: जी।
2: इस युग में आज हम जी रहे हैं, तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए, और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसकी अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता।
1: बिल्कुल
2: तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज, देश, हमारे जुड़े

0: और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं. जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफ़ी साइंस हैं, मैथ्स है, एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे. तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के
1: बराबर
0: बराबर
1: आ
0: का
1: जाएगा
0: हो जाएगा.
1: जी, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है? और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि टीएसएमसी जो ताइवान की कंपनी है जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है. उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था. ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती. तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं. तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर. अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए. तो मुझे प्रधानमंत्री जी के बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा. तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता. मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी.
1: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में. जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
2: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है. जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की, ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए. और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में, मशीन गन्स में लगते थे, वो भी बाहर से आया करते थे, और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेके आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं. इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं. करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में. वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है. तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं. तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है तो डिफेंस में दूसरे नंबर पर डालूंगा, जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही है, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है. और आजकल जैसी निहारिका ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे

0: ये आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल
2: देखिए, डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इंपोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है, बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऐसे कई आप देश आज, चाहे आप चांद में देख लीजिए, वहाँ जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें, या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन।
2: जी
1: अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है,
2: जी
1: लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
2: देखिए, वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहाँ पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती हैं, वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल। ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफ़र करने में, एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे
3: मुझे
1: में?
3: लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे, और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है, वहां जाके जब ट्रेन्स में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स भारत में ऑपरेशनल हैं, और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है, और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कम्फर्ट आया है, क्लीनिनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे, उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका, मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के MSMEs के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें MSMEs की भी बहुत अहम भूमिका है।
2: बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड MSMEs हुआ करते थे, करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड MSMEs हमारे देश में हैं।
1: जी,
2: तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि GST लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया, और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक MSMEs को पूरा उसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से MSMEs को सपोर्ट किया, उसके बाद जो MSMEs की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उसमें MSMEs की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो हमारे देश के MSMEs उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
2: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है, और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
3: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है,

0: कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है। हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, ये तो मैं इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं।
1: जी
0: मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग या भारत में जीडीपी में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां दूं। बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे, पर मुख्य मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
1: जी
0: किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत। जो नया भारत आज भारत की पहचान है, भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के ज़माने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया,
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: మీరింతవరకు భారత ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు 25 సంవత్సరాలు ప్రజాసేవను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆకాశవాణి నుంచి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి విన్నారు.

0: ఒక దేశాన్ని నిర్మించేది కలలుగని ఆ కలల కోసం తమ జీవితాన్ని అర్పించే మనుషులు. ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ఒక శాస్త్రవేత్త, ఒక రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఒక వైద్యుడు, ఇంజనీరు, క్రీడాకారుడు, వాళ్ళు దేశానికి కేవలం సేవ మాత్రమే చేయరు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతారు. వీరంతా చరిత్రలో నిలిచిన వ్యక్తులు కాదు, చరిత్రను మలచిన వ్యక్తులు. ఈ నేలలో వారి అడుగుల ప్రతిధ్వని ఉంది, దేశ భవిష్యత్తులో వారి ఆలోచనల వెలుగుంది. భారతరత్న ఒక జాతి కృతజ్ఞతాగాథ కార్యక్రమంలో ఆ మహనీయులను స్మరించుకుందాం. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు మీ ఎఫ్ఎం వివిధ భారతి 102.8 MHz పై భారతరత్న ప్రత్యేక ధారావాహిక తప్పక వినండి.
1: ఆకాశవాణి సమయం 12 గంటలవుతుంది. హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే ముకేష్ కుమార్ బల్. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था. श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया. इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है. अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है. एक रिपोर्ट.
3: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं. जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है. उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा.

0: उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed the need for policy makers to understand the ground realities while framing policies for economic and social development. The Vice President was addressing the 5th Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Radhakrishnan said that policies should be flexible enough to adapt to changing situations and ensure their implementation. The Vice President noted that India's ongoing economic reforms are rooted in the country's democratic traditions and the process of consensus building. He said that economic resilience cannot be separated from social resilience and development must benefit all sections of society and every region of the country.
2: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefits should reach the nook and corner of the country.
1: Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav will attend the Gaur Palak Sammelan in Bhopal. Mr. Shah will also address the gathering. A state-level Gaur Palak Sammelan is being held at the Bhel Dashehra Maidan in Bhopal. Mr. Shah will honour women cattle farmers who have done good work in the field of animal husbandry. He will also distribute approval letters to beneficiaries of Dr. Bhim Rao Ambedkar Kamdhenu Yojana. The United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader in solar energy. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that chartered accountants have a pivotal role in strengthening India-US economic partnership by helping businesses navigate cross-border taxation, regulatory compliance and financial governance while making Indian enterprises investment ready for global capital. He said this during an interaction with the leadership and

0: मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। आकाशवाणी हैदराबाद के इस हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमारा हृदय हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सेहत का सीधा संबंध हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से है। आज के समय में बदलती जीवन शैली, बढ़ते तनाव, अनियमित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते हृदय रोग के प्रति जागरूक रहना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। लेकिन श्रोताओं, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए केवल बीमारी के लक्षण को पहचानना ही नहीं बल्कि समय रहते सावधानी बरतना, नियमित जांच कराना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हृदय स्वास्थ्य, स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन पर। आज हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेन देवी दत्ता, जो हृदय स्वास्थ्य, हृदय रोग के लक्षण, उनके बचाव और आधुनिक हृदय चिकित्सा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना विचार साझा करेंगे। और इनसे बातचीत कर रही है कृष्णा कुमारी। तो आइए अपने दिल की सेहत को समझने, उसका ख्याल रखने और एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने के लिए सुनते हैं ये साक्षात्कार।
1: आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन और स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, हमारा हृदय और उसका स्वास्थ्य। आज हृदय संबंधी समस्याएं केवल उम्र दराज लोगों तक सीमित नहीं रह गई, कम उम्र में भी हृदय से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल रही है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि हृदय रोग के शुरुआती संकेत क्या है, किन जोखिम कारकों से हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में हम अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेन देवी दत्ता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अवसर है मेरे लिए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल दिल की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है, कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है?
2: जी बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग भी आजकल बहुत नोटिस कर रहे हैं। ये

0: हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में भी इसकी काफी चर्चा होती है. देर इज ए फेज शिफ्ट भी हुआ है. जैसे पहले हार्ट अटैक होने का खतरा या फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब हम लोग एज्ड पीपल में देखते थे, पर
1: जी
0: आजकल बहुत ही डेफिनेट शिफ्ट हुआ है. और जैसे आपने कहा, यंगस्टर्स और जो इवन टीनेजर्स तक इन बीमारियों से पीड़ित हैं.
1: जी
0: खास तौर पे जो युवा वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, जो सॉफ्टवेयर और बीपीओज वगैरह में काम करते हैं, दे आर रियली एक्सपोज टू सम ऑफ दीज इलनेसेस. उनमें काफी हद तक हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों में डायबिटीज, ओवरवेट, स्लीप एबनॉर्मैलिटीज और इवन हार्ट अटैक्स, दिल की बीमारियां तक देखी जाती हैं. इट इज रियली अलार्मिंग, बट ये हो रहा है.
1: जी बिल्कुल, यानी हमारी बदलती जीवन शैली, खान पान और अन्य जोखिम कारकों को लेकर हमें कम उम्र से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है।
0: जी बिल्कुल.
1: इसी संदर्भ में अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय रोग के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? क्या कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जिन्हें लोग अक्सर गैस, थकान या तनाव समझ लेते हैं?
0: लक्षण से पहले मैं कहूंगा सेल्फ मॉनिटरिंग या सेल्फ सर्वेलेंस होनी चाहिए.
1: जी
0: लोग आजकल अपने ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को लेकर के काफी जागरूक हैं, पल्स ऑक्स वगैरह में देख लेते हैं सभी चीजें. बट आई वुड से उसके बियॉन्ड एक जो मेट्रिक है, जो जिसको हम लोग कहते हैं वेट, हम लोग वजन, अपने वजन को लेकर के इक्वली थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए,
1: जी
0: अपने डाइट को लेकर अवेयर होना चाहिए. और सबसे ज्यादा जरूरी है, अब फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज है
1: जी
0: जो जो मियर वॉकिंग को हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कह सकते. एक डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी अगर 4 से 5 दिन हम लोग आधे घंटे का रीजनेबली चैलेंजिंग करते हैं, तो आई थिंक दैट इज एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहेगा. इन सब चीजों पर अगर हम लोग मॉनिटर करें अपने आप को, देन हमने मोर और लेस कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल कर लिया है. और जहां तक आपका सवाल था कि कुछ शुरुआती लक्षण ऐसे हैं, बिल्कुल होते
1: जी
0: हैं. ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे थक जाना, जल्दी थक जाना, या चेस्ट पेन होना, अनईजी हो जाना, या फिर छोटी छोटी जो जो जो पहले चीजें कर सकते थे हम लोग आराम से, जैसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटीज हैं, वो अगर ना कर पाए, उसको करते वक्त थक जाना या रुकने की जरूरत पड़ना,
1: जी
0: ये सब इनिशियल इंडिकेशंस हो सकते हैं. जो बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है, बट ये मार्कर्स हैं कि आपको किसी चीज से कोई परेशानी है और जब आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आई एम नॉट वेल, सो एट दैट पॉइंट मेरे हिसाब से आपको एक टेस्ट
1: जी
0: करवा
1: जी
0: लेना चाहिए.
1: जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। कई बार शरीर के संकेतों को सामान्य समझकर टाल देना नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं उन स्वास्थ्य समस्याओं को जो धीरे धीरे हृदय पर असर डालती है। डॉक्टर साहब, रक्तचाप, मधुमेह और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय को किस तरह प्रभावित करते हैं? इनकी नियमित जांच कितनी जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा, रक्तचाप, जिसको हम लोग कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, डायबिटिक, डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज होना, और इन सब के सेंट्रल सबसे बीचों बीच रहता है आपका फिजिकल एक्टिविटी और आपका वजन. अगर आपका वजन ओवरवेट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी आपकी सीमित हो गई और आपका स्ट्रेस बढ़ गया, आपकी स्लीप अबनॉर्मल हो गई. एक कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपने, जिसको बहुत लोग स्नोरिंग से पहचानते हैं,
1: जी जी
0: खर्राटे लेना.
1: खर्राटे लेना
0: उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके वेट से है. आप जितने ओबीस होते हैं उतना आपकी स्नोरिंग टेंडेंसी या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज्यादा होती है. ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर उभर के आ रहा है. इन सारी चीजों के प्रेजेंस काफी सालों तक रहती है और वो भी इग्नोर्ड हो जाती है या उतना अटेंशन नहीं जाता, तभी जाके धीरे धीरे वो हार्ट की डिजीजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चोकिंग ऑफ हार्ट वेसल्स होते हैं या ब्रेन के वेसल्स होते हैं जिससे हार्ट अटैक पड़ सकता है
1: जी
0: या स्ट्रोक पड़ता है, या हृदय की जो रिदम की इरेगुलरिटीज होती है, रिदम अबनॉर्मैलिटी, इन सब चीजों पे फाइनली जाके असर पड़ने लगता है. काफी समय होता है जिसको हम लोग अगर नजरअंदाज करें, जैसे आपने कहा, अगर इन चीजों पर फोकस ना करें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी ना हो, स्लीप अच्छी ना हो, वेट सही ना हो, सो दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन या फिर एंड ऑर्गन डैमेजेस. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ट में ये असर दिखते हैं.
1: हमें शरीर संकेत देती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल. संकेत देने से पहले कुछ और भी, जैसे मेजरमेंट्स, जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है, बियॉन्ड लिपिड प्रोफाइल, जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें होती है. आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आपकी बॉडी वेट, आपको पता ही होता है वेदर आप बॉडी वेट सही रेंज में है कि नहीं, आप छोटे छोटे फिजिकल एक्टिविटीज को करते हुए थक जाते हैं क्या, या आप आसानी से कर देते हैं, ये सब सेल्फ असेसमेंट अगर हो तो काफी हद तक आप अब समझ पाएंगे कि आप राइट हेल्थ जोन में है कि नहीं है.
1: यानी नियमित स्वास्थ्य जांच केवल बीमारी का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जोखिम को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल.
1: लेकिन जांच के साथ हमारी रोजमर्रा की आदतें भी उतनी ही अहम है। डॉक्टर साहब, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम, नींद और तंबाकू से दूरी का कितना महत्व है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इनको फोर पिलर्स मानता हूँ, चार स्तंभ है। डाइट का महत्व सब लोग आज काफी हद तक समझ गए हैं, वीगन, वेजिटेरियन, ग्रीन फाइबर, ये सब चीजें सोचते हैं, सुनते हैं, बट जहां तक मैं समझता हूँ स्लीप का जो महत्व है कहीं ना कहीं

0: उतना उभर के नहीं आ पाया है। एक्सरसाइज लोग समझते हैं, जानते हैं, बट देन किसी ना किसी तरह या टेंड्स टू गेट इग्नोर्ड, एक तरह से एक्सक्यूज कुछ ना कुछ आ जाता है जिससे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आई थिंक जितना डाइट का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उन बाकी स्लीप और आपका एक्सरसाइज का प्रोबेबली उतना ही महत्व है। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे सोचता हूँ, अगर आपकी एक्सरसाइज अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी आपने अच्छी करी है प्रोएक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉकिंग कर लिया वो दैट्स नॉट एक्सरसाइज टू माय माइंड, अनलेस आप फिजिकली इतने चैलेंज्ड है या इतने ओल्ड हैं। एक्सरसाइज मतलब बॉडी को एक चैलेंज होना चाहिए जो बॉडी रूटीन रोजमर्रा में नहीं करता, सो इट हैज टू बी अ लिटिल मस्कुलोस्केलेटल चैलेंज। अगर आपने एक्सरसाइज नियमित तरीके से किया है तो आपको थोड़ा बहुत डाइट में रियायत मिल जाती है, यू कैन एक्चुअली एंजॉय योर डाइट, यू कैन बी अ लिटिल फ्री ऑफ द कंसर्न्स। तो ये तीन चीजें हैं जो स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस। ओकेजनल अल्कोहल, सोशल ड्रिंकिंग मेरे हिसाब से इज फाइन, उतना इंजरियस नहीं होता अगर वो एडिक्टिव ना हो जाए, आपने रोज नहीं लिया। और स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली जहरीली है, मैं मानता हूं कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: तो आई नो कहना आसान है जो लोग स्ट्रेस से डील करते हैं एंड स्मोकिंग जो उनको हेल्प करता है डील करने के, बट दे हैव टू कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि वो ट्रांजिएंटली हेल्प करता है और वो एक तरीके का शॉर्टकट है। आप उससे बाहर निकले और देखें कि कई और तरीके हैं जो कि हेल्दी हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं आपकी लॉन्जिविटी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की बात की हमने, एक्सरसाइज कैन बी अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट टू योर स्ट्रेस एंड इट कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर। उसको बस अपना के देखें, आपको स्मोकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मोकिंग इज डेफिनेटली समथिंग विच हैज टू बी अवॉइडेड
1: जी। योगा भी एक बहुत ही अच्छा,
0: योगा, पिलाटे, एरोबिक्स, जिम, यू नो, मॉडरेट टू हैवी वेट ट्रेनिंग if you are capable of that, I think it has to be a good mix. Weight training ek mere hisab se personally is a modality which is underused. Log zyada TMT ya fir brisk walking ko exercise mante hain, but jo weight training, jo moderate weight training ki jo benefits hain, wo sarcopenia, jisko age ke sath muscles ka degenerate ho jana, arthritis ho jana, in sari cheezon ko completely by and large aapko weight training प्रोटेक्ट करता है। सो आपकी मसल मास बनी रहती है टिल द लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ और उससे बहुत सारी आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट्स या फिर कंसिस्टेंसीज बनी रहती हैं और आपकी जो लॉन्जेविटी है उसको भी वो बढ़ाता है। सो मेरे हिसाब से मसल ट्रेनिंग, मॉडरेट मसल ट्रेनिंग विथ सम वेट्स इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, अपार्ट फ्रॉम जो दूसरे तरीके हैं, योगा हो गया या फिर साइकिलिंग जो रूटीन एक्टिविटीज लोग करते हैं
1: जी। अगर हम वेट ट्रेनिंग करना चाहें तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही स्टार्ट करना चाहिए?
0: नहीं, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, वेट ट्रेनिंग कोई भी कर सकता है। यस, अगर आप पहले से बीमार हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है भगवान न करे, आपको ऑलरेडी कोई दूसरी चीज है, ऑर्गन डैमेज है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट कंडीशंस, तब जरूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप एक्सट्रीम वेट ट्रेनिंग में जाते हैं देन इट्स अ चैलेंज। अगर लाइट टू मॉडरेट ट्रेनिंग करते हैं तो देयर आर कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो कि एक्चुअली सेंटर्ड है अराउंड मैनेजेबल वेट ट्रेनिंग विच एक्चुअली हेल्प्स देम बिल्ड देयर कार्डियक एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। So weight training is very important as a part of exercise.
1: जी बिल्कुल, हृदय की सेहत के लिए कोई एक चीज नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: अब मैं आपसे थोड़ा अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग बाहर से बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं लेकिन अचानक उन्हें हृदय संबंधी गंभीर समस्या हो जाती है, क्या हृदय रोग कई वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के रह सकता है?
0: जी हो सकता है, खासतौर पर हम बात करें अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे जो जीन्स में ट्रांसमिट होती हैं, हार्ट की रिदम एबनॉर्मैलिटीज कुछ सीरियस होती हैं जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ होता है, कार्डियोमायोपैथीज होती हैं जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो काफी एक्टिव भी होते हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं जिसके बारे में हमने अभी बातचीत की है और अचानक से उनकी जिम मौत हो जाती है विद ट्रेजिक सर्कमस्टांसिस में, मैराथन में चल रहे हैं डेथ हो गई या फिर एकदम से हार्ट अटैक पड़ गया। ऐसी सिचुएशंस में देखिए कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। आप कुछ जेनेटिक डिसएडवांटेजेस के साथ बॉर्न होते हैं, अबनॉर्मल टेंडेंसीज उनकी होती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें लिपिड प्रोफाइल आपकी बहुत अबनॉर्मल हो जाती है, इवन दो यू आर वेरी हेल्दी आपकी बॉडी में लिपिड मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं होती। सो आप कुछ भी कर ले वो आपकी एक टेंडेंसी रहती है जो आपके ब्लड में एक अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल बने रहेंगे, वो आपको एक रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। भले वो इंसान एक्टिव है, सब कुछ कर रहा है, ही स्टिल एट ए हायर रिस्क। कुछ कार्डियोमायोपैथीज ले लें जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कुछ पुरानी जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज है जो पिछले पीढ़ियों से आप में आ गई हैं, तो दैट ऑल्सो प्रीडिस्पोजेज सच इंडिविजुअल्स फॉर सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ हो जाती हैं। बट ऐसी चीजें बहुत रेयर होती हैं, बट जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली

0: देखिए, चारों तरफ ट्रेजेडीज तो होती हैं। आप देखें, कई बार हमारा अटेंशन जो छोटा एक इवेंट है, बहुत माइनर इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस, उस पे
1: जी
0: चला जाता है। बट यू हैव टू एट द एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सो जो फैक्टर हमारे हाथ में है, जो डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शंस, वो करें, तो बाय एंड लार्ज हमने जो करना था हमने वो कर दिया। बाकी जो हेल्थ स्क्रीन्स हैं, जो रूटीन हम लोग हेल्थ स्क्रीन करते हैं, पैनल्स करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पैनल है उसमें ये सब जो फ्रीक एबनॉर्मैलिटीज होती हैं जिससे खतरा होता है, वो पता चल जाता है। उनका
1: जी
0: रूटीन एबनॉर्मल स्क्रीनिंग में कई बार डिटेक्शन हो जाता है, और ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके।
1: जी
0: बट एट द एंड ऑफ इट, ये जैसे मैंने आपने पिछले सवाल में पूछा, ये पिलर्स को फॉलो करना जरूरी है, अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी पैटर्न में, स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शन, स्टेइंग अवे फ्रॉम स्क्रीन, स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर सेल्फ फिजिकली, डाइट अच्छा ले, एक्सरसाइज करें।
1: जी
0: आपने बहुत सारी चीजें, नहीं मैं तो कहूंगा 95% तक चीजें आपने सेल्फ करेक्ट कर ली हैं।
1: जी यानी हमें खुद का ख्याल
0: यस,
1: रखना
0: बिल्कुल
1: चाहिए। जी,
0: बिल्कुल
1: ये बात निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत जागरूक करने वाली है कि केवल बाहर से स्वस्थ दिखना हमेशा हृदय के लिए पूरी तरह स्वस्थ होने के प्रमाण नहीं है। इसी से जुड़ा एक आम भ्रम है, सीने में दर्द या घबराहट होने पर लोग अक्सर उसे तनाव या गैस समझ लेते हैं। कैसे पता चले कि ये सामान्य समस्या है या तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत है?
0: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत रेलेवेंट है आज की तारीख में, क्योंकि हमने ऐसे कई इंडिविजुअल्स को देखा है, पेशेंट्स को देखा है,
1: जी
0: और ऐसे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं कई बार अपने करियर में, कि किसी को सीने में एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट हो रही है और उसको उन्होंने गैस करार दिया है। कुछ डिले के बाद जब वो उसका रिलीफ नहीं हुआ है, और जब फाइनली वो लोग पहुंचे हैं हेल्थ केयर सेटअप में, देन उसका डायरेक्टली उनका ये डिटेक्शन हुआ कि वो हार्ट अटैक से पीड़ित थे, पिछले 3 दिनों से सफर कर रहे थे, और जब तक उनको कोई अटेंशन मिले, द डैमेज हैड बीन डन, हार्ट का काफी हद तक नुकसान हो चुका था। तो ऐसे कई बार हुए हैं। ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो फॉर्चुनेट भी हैं कि वो डैमेज होते होते बचा है, वो हार्ट अटैक एक सब सब अक्यूट या फिर एक 90% थ्रेशोल्ड में आके रुक गया है,
1: जी
0: जिसमें इन दैट केस उनको वो मिल जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं और ये होता भी है, और फॉर दैट रीजन कहीं ना कहीं ये चीज अब लोगों में भी काफी हद तक अवेयरनेस आ गया है, और दैट ऑफन कॉजेस उल्टा भी प्रभाव पड़ा है।
1: जी
0: तो उसका उल्टा भी हम लोग कई कई बार देखते हैं कि छोटी छोटी जो मस्कुलोस्केलेटल पेन्स हैं, या फिर लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि
1: जी
0: जो हल्का फुल्का जो पेट में गैस है या फिर कोई एसिडिटी है, उसको भी क्रॉस चेक करने के लिए। अच्छा, दोनों तरफ की बातें सही हैं। अगर आप ये देखें कि अगर किसी ने अपने आप को चेक करा लिया, जो कि एक माइनर प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम थी नहीं, उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट अगर वाकई में कोई बड़ा मसला था और हृदय रोग था और हार्ट अटैक जैसी कुछ इश्यू थी, उसका डिटेक्शन अगर होता है चेक्स, हेल्थ चेक से, तो आई थिंक उससे ओवरऑल सोसाइटी को फायदा हुआ, एक जान, कीमती जान बच गई।
1: बच सकती
0: सो
1: है।
0: यस, आई वुड से स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी चेस्ट में अनइजीनेस है, जो कि आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, आपको परेशानी हो रही है, खासतौर पर अगर आप फिजिकली एक्टिविटी या कुछ कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ गए और आपको वो भारीपन, या लेफ्ट साइड के हाथ में कुछ पेन आपको लग रहा है, कई बार जॉ में या फेस के लेफ्ट साइड में फील होता है, और टिपिकली एक्टिविटी के साथ, फिजिकल एक्टिविटी करने पे हो रहा है, तो उसको आप जरूर सीरियसली लें। आपको बॉडी को कई बार आपको समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपको चले जाना चाहिए। अगर सब सही है तो आपने आपका कुछ खोया नहीं।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी जानकारी है ये।
0: जी
1: ऐसे मामले में लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हृदय घात के कुछ कम चर्चित कारणों की। डॉक्टर साहब, आमतौर पर माना जाता है कि हृदय घात का मुख्य कारण धमनियों में रुकावट होता है।
0: जी
1: क्या इसके अलावा भी हृदय घात के कुछ कम जाने पहचाने कारण हो सकते हैं?
0: जी सो आप बात कर रही हैं हार्ट के धमनियों में, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से,
1: जी
0: जो सबसे बड़ा जो इवेंट होता है उसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, जो नस बंद हो जाने से होता है।
1: जी
0: नस अगर पूरी तरह बंद भी ना हो और क्रिटिकली नैरो हो गई हो, 90% से ज्यादा नैरो हो गई हो, तो बिना बंद हुए भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है, पर वो उतना सीवियर इमरजेंसी नहीं होता,
1: जी
0: वो हार्ट अटैक नहीं कहलाता। ये सारी चीजें जो है वो हार्ट की धमनियों से जुड़ी हुई है। हार्ट की धमनियों से बाहर हार्ट की दूसरी कई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट फेलियर होना, हार्ट की मसल्स में वीकनेस हो जाना, हार्ट का एनलार्जमेंट हो जाना,
1: जी
0: कार्डियोमायोपैथी कहते हैं उसको, हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण कारण है पूरा एक पुराना कोई हार्ट अटैक आके आपके हार्ट को कमजोर करके निकल गया हो जिसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया
1: जी।
0: या फिर हार्ट की रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम होना। फॉर एग्जांपल हार्ट की एक बड़ी खूबसूरत ताल होती है, हार्ट में कई चैम्बर्स होते हैं जो एक बड़े खूबसूरत ताल में एक दूसरे के साथ एक सम्मेलन के साथ काम करते हैं जिसका बहुत ही सेंट्रल रोल

0: होता है हार्ट की पंपिंग में, इस ताल में गड़बड़ी होना, उसको हम लोग टेक्निकली कार्डियक एरिथमिया बोलते हैं, हार्ट की रिदम डिसऑर्डर्स या डिजीजेस बोलते हैं उसका। वो एक अलग स्पेशलिटी है जिसका मैं स्पेशलिस्ट, जो मैं देखता हूँ अपनी
1: जी,
0: प्रैक्टिस में, वो रिदम के प्रॉब्लम्स के अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, कई बार माइल्ड होती है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस बीमारियां भी होती हैं। उसी तरह हार्ट में वेल्व्स नाम की टिश्यूज होती हैं, जिसमें एक तरह से ये समझ लें कि हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में वो जंक्शंस या दरवाजे होते हैं, वेल्व्स खराब हो जाती हैं, लीकेज होती है या नैरो हो जाते हैं, उससे हार्ट फेलियर होता है। जेनेटिक कंडीशंस

0: है भी कॉमन नहीं है जिसका डिस्कशन जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया है।
1: जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे श्रोताओं को।
0: जी
1: यानी हृदयघात के पीछे कई अलग अलग परिस्थितियां और जोखिम कारक हो सकते हैं,
0: जी
1: इसलिए इसके बारे में हमारी समझ भी व्यापक होनी चाहिए। अब मैं महिलाओं के हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण क्या पुरुषों से अलग हो सकते हैं? महिलाओं को अपने हृदय के स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण तो अलग नहीं होते, लक्षण सिमिलर ही होते हैं, जैसे किसी भी पुरुष को होते हैं महिलाओं को उसी तरह के लक्षण होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। बायोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि सोशल रीजंस, साइको सोशल रीजंस ज्यादा है, वो प्रेजेंटेशन थोड़ा उनका क्लिनिक में आना, एटलीस्ट गांव में या फिर हैदराबाद से बाहर चले जाएं तो छोटे छोटे शहरों में शायद उनका हेल्थ थोड़ा इग्नोर हो जाता है, वो उतने लक्षणों तक पहुंचने के बाद ही हॉस्पिटल जाना ठीक समझते हैं, वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से लक्षणों को कम मांगते हैं और अपना हेल्थ प्रॉबेबली प्रायोरिटाइज नहीं करते। बट ये चीजें बदल रही हैं, तो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन आई थिंक थोड़ा सा सोशली थोड़ा फर्क है। बाकी बीमारियां दोनों, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो जेंडर में थोड़ा ज्यादा मर्दों में होती हैं, महिलाओं में होती है, बट बाय एंड लार्ज बीमारियों का प्रेजेंटेशन या फिर जो डैमेज पोटेंशियल होता है वो सिमिलर होता है।
1: यानी महिलाओं को भी शुरुआती छोटी सी छोटी लक्षणों को भी अनदेखा नहीं करना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर महिलाओं में, एक चीज जो बहुत नोन फैक्ट है, मेनोपॉज से पहले जो पीरियड्स होती हैं उनकी, अगर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं मेनोपॉज होने से पहले, कुदरती तौर पे उनका प्रोटेक्शन थोड़ा सा, दे आर मोर इम्यून, उनको हार्ट अटैक्स कम होती हैं, उनकी हार्ट की नसों में, धमनियों में ब्लॉकेजेस की टेंडेंसी कम होती है, ये कुदरती तौर पे उनका एक प्रोटेक्शन होता है। बट जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद वो उतनी ही प्रोन होते हैं मर्दों के जैसे फॉर टू डेवलप ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं मर्दों की तरह, तो ये थोड़ा सा फर्क जरूर होता है। बट ये फर्क भी आजकल बदलने लगा, आजकल की स्ट्रेस को देखते हुए हमने कई प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉज से पहले भी लेडीज को देखे हैं ब्लॉकेजेस के साथ, हालांकि उनका नंबर डेफिनेटली पुरुषों से काफी कम होता है।
1: जी,
0: ये एक बड़ा फर्क है।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। महिलाओं के लक्षणों को पहचानने और उन्हें समय पर गंभीरता से लेना जागरूकता का एक अहम हिस्सा है। अब एक और ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में रहता है, डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल सामान्य है तो क्या फिर भी उसे हृदयघात हो सकता है? ऐसे कौन से जोखिम हैं जो सामान्य जांच में छूट सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, होते हैं और कई बार होते हुए देखे भी हैं। खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने जो युवा वर्ग में जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं और अपने जो हाई स्ट्रेस लाइफ जीते हैं, बड़े टारगेट ओरिएंटेड लाइफ होते हैं उनके, दिन में 15 से 18 घंटे का अनयूजुअल काम करते हैं अपने सिस्टम के सामने बैठ के, बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रेस से गुजरते हैं वो लोग, तो आई थिंक उसका आंकन आप ब्लड प्रेशर तो उनका अब नॉर्मल होता ही है, बट कई बार नॉर्मल होते हुए भी उनका रिस्क जो है काफी अंडर रेटेड होता है, उनकी स्लीप बहुत अब नॉर्मल होती है, कई बार ये लोग इजी विक्टिम्स होते हैं एडिक्शंस के लिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उनको एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे किसी चीज की ओर वो खिंच जाते हैं, जैसे चिप्स पे या फिर जो मंचिंग पे चले जाते हैं, दैट गिव्स देम अ सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत डोपामिन, थोड़ी देर के लिए एक खुशी देता है, स्मोकिंग इज वन सच फैक्टर, स्लीप कई बार उनकी बहुत पैथोलॉजिकल होती है, पूरी और रेस्टफुल स्लीप नहीं हो पाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे गो थ्रू अ ट्रेमेंडस मेंटल स्ट्रेस, जो कि टारगेट, वो जो भय के साथ, निरंतर एक डर के साथ जीना कि मैं टारगेट रीच कर पाऊंगा नहीं, एक सीनियर सर पे बैठ के गालियां देता है या कंटिन्यूअसली उनको, सो ऐसे लोगों पे आई थिंक
1: बहुत
0: ज्यादा होता है, और ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल तक सीमित नहीं है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में हम लोगों ने देखा है, और ये आज के मॉडर्न लाइफ का एक अंडर हाईलाइटिंग फैक्टर हो गया है, और दैट आई थिंक इज इमर्ज एज अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, और बहुत लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होते हुए भी, बीपी नॉर्मल होते हुए भी हमने मैसिव हार्ट अटैक्स होते हुए देखा है, विच इज हम लोग कई बार ये समझ भी नहीं पाते, एज डॉक्टर्स वी आर हैरान है, हुआ ये हुआ तो हुआ क्यों, ये ना स्मोकिंग करता है, ये हेल्दी है, इसका वेट ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो अंडरलाइंग स्ट्रेस है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल।
1: जी, जी डॉक्टर साहब, आजकल लोग स्मार्ट वॉच और अन्य उपकरणों से अपनी हृदय गति और कभी कभी हृदय की गतिविधि भी जांचते हैं। इन आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है और किस स्थिति में चिकित्सक से मिलना चाहिए?
0: मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, इस पहली बात तो भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं, बट डिजिटली अपने आप को इतना स्क्रूटिनाइज करने से आप एक पैरानोइया दिखाते हैं कि आपने आपको अपने शरीर

0: भरोसा नहीं है, पल्स रेट आगे पीछे होता है। अगर आपको देखना ही है नंबर, तो मेरे हिसाब से द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर शुड बी वेइंग मशीन। एक घर में डिजिटल वेइंग मशीन रख लीजिए और उसको फॉलो करिए, रोज वेइंग मशीन अपना वेट चार्ट करिए। बट अनलेस आप एक ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, रोगी हैं, जो आपको चार्टिंग करने के लिए कहा गया है, तो मैंने कई यंग इंडिविजुअल्स को ये पॉइंट आउट भी किया है जो क्लिनिक में आते हैं, मेरा हार्ट रेट 120 हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली अननेसेसरी। एक वो साइकोलॉजिकल पैरानोइया बन के उभर रहा है,
1: इससे और भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है।
0: और बिल्कुल, आपने एक नई बीमारी खड़ी कर दी जो आपके पास थी नहीं। अरे मेरा पल्स रेट 110 हो गया कल, आज 120 है, ये क्यों हुआ? अरे पल्स रेट होता ही है आगे पीछे बढ़ने के लिए, टू डील विद स्ट्रेस अपना पल्स रेट बढ़ता ही है। तो आपने एक नई समस्या खड़ी कर दी जो थी नहीं अपने दिमाग में, और उससे आप पीड़ित हो गए। तो मेरे हिसाब से वो ओवरडू हो रहा है, लोग ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिचुएशंस में ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस में इट इज नॉट नीड। आप देख लीजिए 20-30 साल पहले, पैंडेमिक से पहले ये सारी चीजें कोविड के बाद आई। अब 2020 से पहले लोग अपना पल्स रेट उतना चेक करते थे?
1: नहीं
0: करते थे। 2020 से पहले, 2000 से पहले बात कर ले, लोग ज्यादा हेल्दी हुआ करते थे, तब हार्ट अटैक्स कम होते थे, तब लोगों को इतनी हार्ट की बीमारियां नहीं होती थी। बट इन गैजेट से If anything, things should have improved. Actually, कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, एक मेंटल बीमारी और पैदा हो गई है। मैं कहता हूँ डिजिटल चेस शुरू हो गया कि मेरा पल्स रेट और मेरा ब्लड प्रेशर। आई थिंक इट इज अननेसेसरी। कुछ मेडिकल सिचुएशंस में जहां पे ये उपयोगी होती हैं, आपका डॉक्टर खुद ब खुद आपको पॉइंट आउट कर देगा। जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ कि आपने ये देख लेना चाहिए, सो दैट हेल्प्स अस गाइड योर ट्रीटमेंट। कि भाई आपका ब्लड प्रेशर घर में इतना है, रात को इतना है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। कई बार हार्ट की रिदम की, जैसे बताया था आपको, हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कई बार एडवाइस करते हैं कि आप ट्रैक करिए, देखिए, सो दैट हमको एक ओवरऑल लॉन्गर ड्यूरेशन में पता चले कि आपकी हार्ट की गतिविधि कैसी है।
1: सिर्फ एक जानकारी के लिए यूज करना चाहिए।
0: जी, दैट हेल्प्स अस टू रिफाइन योर ट्रीटमेंट, या आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको मॉडिफाई करने का एक मौका मिल जाता है। बट रूटीनली आप अपना ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट और ये सब चेक करते चले जा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एक फिजूल है।
1: जी डॉक्टर साहब, और अंत में, अगर आप आम लोगों को हृदय के लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए 5 सरल नियम देना चाहें, तो वो क्या होंगे?
0: अपना डाइट देखें, आप कितना कार्बोहाइड्रेट, एक थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, अपने पल्स रेट और बीपी से ज्यादा आप कितना कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा जानकारी अपने डाइट के बारे में रखें कि आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक कितना है। बहुत ज्यादा रोबोटिक होने की जरूरत नहीं है, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, सो डाइट आपकी क्वालिटी डाइट कितनी है, और उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप कितना ले रहे हैं। दूसरा, आप अपने स्लीप को लेकर थोड़ा सा वो होइए कि आप कितने घंटे सो रहे हैं। आप सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं, कितना अनडिस्टर्ब्ड और आपका कितना फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल स्लीप है, कितना आप उसमें, कितना गैजेट्स इस्तेमाल कर, कुछ लोग बीच में उठ करके मोबाइल फोन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक 7-8 घंटे का एक डेली स्लीप, अच्छा स्लीप लें। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है, मेरे हिसाब से द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर एक पॉइंट अगर होता तो दैट वुड बी फिजिकल एक्टिविटी। और मेरे हिसाब से वॉकिंग इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी, इट इज नॉट कंसिडर्ड एन एक्सरसाइज। ये मैं बहुत ही क्लियरली अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, और कोई बोलता है, अगर मैं किसी को पूछता हूँ आप एक्सरसाइज करते हैं, जी मैं एक्टिव हूँ, मैं वॉकिंग हूँ, आई डो नॉट कॉल इट फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, बॉडी को मूव जरूर कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कृष्णा, आप बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज दें, उसको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर लेके जाएं, आधा घंटा थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करें, थोड़ा सा योगा करें, जो भी है, जो आपको बॉडी से आपको एक आपकी थोड़ी देर के लिए पल्स रेट बढ़े और फिर कम हो जाए, तो दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करें, ये तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ हमने बात करी स्मोकिंग, और जहां तक हो सके कंपल्सिव एडिक्शन से दूर रहें। और पांचवा, अगर आप बात कर रहे हैं पूछे हैं, तो मेरे हिसाब से डिजिटल डी एडिक्शन एक ये बहुत जरूरी ये है। डिजिटल डी एडिक्शन इंक्लूडिंग योर पैरानोइया अबाउट योर नंबर्स, आपने अभी डिजिटल वॉचेस की बात करी, फोन पे के साथ जुड़े रहना, स्क्रीन के साथ जुड़े रहना, वो जो ब्लू रे स्लीप अबनॉर्मैलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें, एक वो अलग टॉपिक हो गया है, मेंटल और फिजिकल इलनेसेस होती है। तो आई थिंक वी शुड स्पेंड टाइम इन द फिजिकल वर्ल्ड रादर देन द डिजिटल वर्ल्ड।
1: जी डॉक्टर सोमन देवदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हृदय स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को बहुत सरल तरीके से समझाया। उम्मीद है कि आज की बातचीत से हमारे श्रोता न केवल हृदय रोग के लक्षणों और जोखिमों को बेहतर ढंग से समझेंगे, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे स्वास्थ्य बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: हार्दिक आभार आप स्वीकार करें मुझे यहाँ पे बुलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन आपका।
1: थैंक यू।
0: नमस्कार। नमस्कार
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हृदय स्वास्थ्य, स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन। इस विषय पर आपने सुनी कार्डियोलॉजिस्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेन देवी दत्ता जी के साथ बातचीत। उनसे बातचीत कर रही थी

कृष्णा कुमारी। मित्रों, याद रखिए, स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन की बुनियाद है। इसीलिए अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने जीवन शैली को स्वस्थ बनाइए, नियमित रूप से अपना स्वास्थ्य की जांच कराते रहिए। इसी संदेश के साथ आज का ये हिंदी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले हिंदी कार्यक्रम में एक नए विषय, नए विचारों और नए उत्साह के साथ इसी तरंग पर। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

0: ఈనాటి వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై హబీబు రహమాన్. कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तिजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे. वजीर आजम नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज अपने 12 साल मुकम्मल कर रहा है. आबनाए हुरमुज में कुवैत के परचमबरदार बहरी जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बहिफाजत बचा लिया गया है. और एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए सोने का तमगा जीता है. वहीं परनवी शरत उर्स गोल्फ में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं. अब खबरें तफसील से. तिजारत सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आजाद तिजारती ताल्लुकात का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसमें दुनिया भर की मईशतों का तकरीबन 75% से 80% हिस्सा शामिल किया जा सकता है. शिकागो में अमरीकी भारतीय कम्युनिटी फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने बताया कि भारत ने हालिया बरसों में अपने तिजारती मुजाकरात में खातिरखा औसत पैदा की है और कई मुजाकरात अब भी जारी हैं. उन्होंने बताया कि इस बढ़ते हुए नेटवर्क से भारत में मौजूद कंपनियों वसी बैन अल-अक़वामी बाजार तक रसाई फराहम होगी. जनाब गोयल ने कि 2014 से पहले भारत का दुनिया की मईशतों के साथ आजादाना तजारती माहदे थे जिनकी मजमूई घरेलू पैदावार तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर थी. वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं. इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड आज ही के दिन साल 2014 में विजयदशमी के मौके पर नशर किया गया था. हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड नशर किया गया. गुज़श्ता 12 साल के दौरान मन की बात ने मुल्क भर में रोनुमा होने वाली मुस्बत यकसर तब्दीली को उजागर करने और भारत के तरक्की के सफर में लोगों की सरगर्म शिरकत की हौसला अफजाई के लिए एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म फराहम किया है. इस माहाना प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम मुल्क भर के ऐसे लोगों की मुतासिर कुन कहानियां शेयर करते हैं जो तालीम, हिफ्जान सेहत, माहौलियाती तहफ्फुज़, इख्तरा और समाजी खिदमात के शोबों में इम्तियाजी काम अंजाम दे रहे हैं. मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क्स पर नशर किया जाता है और ये AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब रहता है. ये प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी लाइव नशर किया जाता है. मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में गौपालक सम्मेलन शिरकत करेंगे जो कि दूध की पैदावार और डेयरी के शोबे की बड़ी तकरीब होगी. इस मौके पर जनाब शाह तकरीब से खिताब भी करेंगे. रियासती सतह का ये गौपालक सम्मेलन भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है. इस दौरान जनाब शाह मवेशी परवरी के शोबे से वाबस्ता और बेहतरीन काम करने वाली किसान खवातीन की हौसला अफजाई करेंगे.

0: नाई हुरमुज में कुवैत के परचम बरदार टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद 5 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। ओमान में भारतीय सफारतखाने ने आज एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय शहरियों को बहफाजत निकालने में मदद की। मिशन ने इस बचाव कार्रवाई में ओमान के हुक्काम की लगातार मदद और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा है कि इक्तसादी मुजाहमत को समाजी मुजाहमत से अलग नहीं किया जा सकता और यही शमूलियत तेजी से बदलती दुनिया में मुजाहमत की बुनियाद है। जनाब राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 5वीं कौटल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही। कॉन्क्लेव का मौजू है तेजी से बदलती दुनिया में मुजाहमत। नायब सदर ने कहा है कि इत्तफाक राय, शमूलियत और जिम्मेदारी पॉलिसी साजी से ही जमहूरियत और तरक्की साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और पायदार तरक्की की बुनियाद फराहम करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि असल मुजाहमत इस बात में पिनहा होती है कि कोई भी शहरी, कंपनी या खित्ता पीछे न रहे। नायब सदर ने साल 2047 तक विकसित भारत के लिए तामीर के लिए इज्तमाई कोशिशों की अपील की।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकॉनमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकॉनमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकॉनमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: जनाब राधाकृष्णन ने तेजी से बदलती आलमी तरजीहात, बदलती टेक्नोलॉजी और उभरते हुए माहौलियाती चैलेंजों के दरमियान इत्तफाक राय के जरिए फैसला साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहरान के दौरान इत्तफाक राय पर मबनी फैसलों की बहुत जरूरत होती है। नायब सदर ने मजीद कहा कि चूंकि बहसो मुबाहसे जरूरी हैं, लेकिन उनका सभी के लिए काबिल कबूल और आखिरी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत मुनशियात की स्मगलिंग के एक बड़े मुलजिम नवप्रीत सिंह को तुर्किया से कामयाबी के साथ भारत ले आई है। मुल्क की नफाज कानून की एजेंसियों की इस कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह ने जाली शनाख्त नवाब विर्क के नाम से तुर्किया की शहरियत हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मैथम फेटामाइन गैर कानूनी तरीके से भारत भेजता था। उन्होंने बताया कि मुतालका एजेंसियों ने मुलजिम का सुराग लगाया, इसकी असल शनाख्त बेनकाब की और उसे भारत लाने में कामयाबी हासिल की। वजीर मौसूफ ने बताया कि नवप्रीत सिंह को मुनशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम से मुतालिक कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। वस्मत तालुका के पांगरा शिंदे इलाके में सुबह तकरीबन 9:43 पर 4.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इससे कबल सुबह 7:47 पर 3.3 शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद 4.5 शिद्दत का निस्बतन ताकतवर झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जलजले के कई हल्के झटके भी महसूस किए गए। हिंगोली शहर और जिले के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कुछ लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और खुले मकामात पर जमा हो गए। नेपाल में आज गंडकी सूबे में एक बस पलटने के वाकये में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक काठमांडू जाने वाली इस बस में 18 मुसाफिर सवार थे और ये वाकया नवलपरासी जिले के दून इलाके में पेश आया। जख्मी मुसाफिरों को इलाज मुआलजे के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया। एशियाई खेलों के आखिरी दिन मर्दों के T20 फाइनल में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को 19 रन से हराते हुए सोने का तमगा जीता। यह मैच आज जापान के निशहिन में खेला गया। भारत की जानिब से दिए गए 212 रन के जवाब में पाकिस्तानी की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 22 गेंदों में 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज ने 96 रन बनाए, वहीं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अरफात मिनहाज और तेज गेंदबाज अहमद दालिया ने 2-2 विकेट लिए। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایشین گیمز 2026 میں خواتین کے انفرادی

स्ट्रोक प्ले में सोने का तमगा जीतने और गोल्फ इन्फरादी तौर पर पहला सोने का तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनने पर परनवी शरतुर्स को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि परनवी शरतुर्स ने भारतीय गोल्फ की तारीख में यह कारनामा अंजाम दिया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि सोने का यह तमगा भारतीय खवातीन के गोल्फ में संगे मील की हैसियत रखता है। सदर जमहूरिया ने परनवी शरतुर्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में आज भारतीय तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इन्फरादी रिकर्व जुमरे में हमवतन धीरज बोम्मा देवरा को 4-6 से हराकर कांसे का तमगा जीता। मर्दों के क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में महाराजा देवेंद्र सिंह बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आजादाना तिजारती समझौते आलमी मईशतों के 75% का इहाता करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात आज

0: Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. Five Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288

0: प्रवासी भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफ़ी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी तक। और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि कोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थी को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में

0: मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वेयर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल अवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरी वन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना, अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
2: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाईपास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

0: सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gaur Palak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Details from our correspondent.
3: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah announced 101 crore rupees for cow shelters at the Sammelan, attended by around 35,000 Gopalaks from 11 districts. He also virtually performed the foundation stone ceremony for a dairy plant to be built in Ujjain at a cost of 255 crore rupees. He said that a central laboratory has been set up in Bhopal at a cost of 12 crore rupees and a mini dairy plant will be built in Shivpuri. Before the Gopalak Sammelan, the Union Minister also inaugurated an exhibition by the Madhya Pradesh Police on the new criminal laws at the Bhel Dashara Maidan. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh, from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Home Minister Amit Shah said agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Mr. Shah added that from 2019 till August this year, a total of 288 fugitives from 36 countries have been brought back to India. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the fifth Kautilya Economic Conclave in New Delhi, the finance minister said the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes.